0: चल मन्या अज तू दूर कीता पर कदे तां तेरे नेड़े सी ते जेड़े तेरे पिछे आपां छड़ते ओ भी सजना चेहरे ही सी किन्ने मिले तेरे जान पिछों ते किन्ने ही मन तो लै गए साथों तेरे जिहा नहीं बन होया हां पर तेरे बन के रह गए जिन्हें खुश रहे तेरे नाल रहे लगी दुनिया तेरे तो वड्डी नी साडे हासे खो लै जान वाली तू साडे शहर दी रौनक भी छड्डी नी
1: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.
2: Hi, Divine, let me work.

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

0: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7 East FM.
1: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
2: This is High Voltage Music Musty on East FM 102.7.
3: Assalamu alaikum dosto and welcome to East FM 102.7. सुन रहे हैं हाई वोल्टेज म्यूजिक मस्ती विद योर होस्ट उस्मान. आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग ऑलराइट एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक ऑन ईस्ट एफएम 102.7.
4: تقدر تعمل كل حاجه